ना वो ना जाने मेरा सचिया बादशाह, कोई ना वो ना जाने मेरा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: पाणी पिता माता धरत महत दिवसरा दई दया खेलै सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचै धर्म दूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर
1: जिनी नाम ते आया कोई मसक्कत

सत श्री अकाल पुरख जी का खालसा जी साहेब बोलो जी बोलो जी बोलो जी बोलो जी श्री वाहिगुरु जी।

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

धन संपा सुख दियो धन संजय सुख दियो नानक सुन रे मना सिमरन काने मारत काहे सब सुदा राम है सुख दूसर नाम न कोई कौन के मना नानक सिमरत गत

जहे अंड ते ब्रह्मांड कीने सो चौदह खंड सब कीन जगत पसार अव्यक्त रूप उतार।

तुही प्रचस तुही पतस तुही चितस तुही और दस तुही भजस तुवंग रटस तुवंग ठटस तुवंग जमी तुही जमा तुही मकी तुही।

मोहन जी मदारक ते असुनी कुमार कते अंसावतार कते काल बस भय है वीर ओ पिगंबर कते गाने ना परत इत भूम हित होय के फिर भूम ही मिलाए है जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया कई को सुलो चलत है बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत है मान से महीप और लीप कैसे छत्रधारी बड्डो अभिमान भुज दंड को करत है दार से दिली सन द्रुजोधन से मानधारी भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है सिज दे करे अनेक तोप जी कपट बेस पोस दी अनेक दानी वावत है शीस कहो गाह भयो मल जो पे काटत अनेक दंड सोत ना डंडो ते अस टांग अथ तीस कहो कहा भयो रोगी जो पे डारो रहे उर्द मुख मान ते न मुंड ने हरायो आद ईस कहो कामना अधीन सदा दामना प्रवीण एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीस कहो शीस पट कत जग कान में खजूरा दस मूड छट कत मित्र पुत्र हूं के सुख सौ आग को चरैया फल फूल को पछैया ता सदा बन को ब्रह्मैया और दूसरो न भूख सौ कहा भयो भेड़ जो खसत शीस बृछन सो माटी को पछैया बोल पूछ लीज जो कसौ कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना भीन कैसे भेट पर लोक सौ नाचोई करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर घन करोई करत है एक पाए ठंड सदा वन में रहत ब्रिज फूक फूक पाम भूम श्रावक धरत है पाहन अनेक जुग एक ठोर बास करे काग और चील देश देश विचरत है ज्ञान के विहीन महादान में न उजलिन भावना यकीन दीन कैसे कह तरत है जैसे एक स्वांगी कहूँ जो किया बैरागी बने कब हूँ संन्यास भेष बन के दिखावई कहूँ पान हारी कहूँ बैठ लाए तारी कहूँ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पे लगावे बारी कहूँ दंडधारी हुए के लोग न भ्रमावई कामना अधीन पर नाचत है नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई पंच बार की दर पुकारे पर शीत काल गुंचर औगा दहा अनेक दा पुकार ही कहा भयो जब कल वत्र लियो कांसी बीज चीर चीर चोर टाक उठारन सो मार ही कहा भयो फांसी डार बूढ़ जड़ गंग धार डार डार फांस ठग मार मार डार ही डूबे नरक दार मूढ़ ज्ञान के बिना विचार भावना विहीन कैसे ज्ञान को विचार ही ताप के सहत जो पे पाइये तापनाथ तापना अनेक तन घायल सहत है जाप के किए ते जो पे पायत अजाप देव पूदना सदीव तुही उच्चरत है नभ के उड़ते जो पे नारायण पाइयत अनल आकाश पंछी डोल वो करत है आग में जरत गत राण की परत कर पताल के बाज के उपजंग न तरत है को भयो मुंडिया सन्यासी को जोगी भयो को ब्रह्मचारी को जति अनुमान बो हिंदू तुरक को रावजी इमाम साफी मानस की जात सब एक पहचान बो करता करीम सोई रास करहीम उई दूसरो न भेद कोई भूल भ्रम मान बो एक ही के सेव सब ही गुर देव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान बो देहो राम सीत सोई पूजा निवाज ओई मानस सब एक पे अनेक को भ्रमाओ है देवता देव जज गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन के भेष को प्रभाव है एक नैन एक

उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाएंगे, जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है, धूर के कणों का फिर धूर ही समाएंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे, तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए, ताही ते उपज सब ताही में समाएंगे। केते कछ मछ केते उनको करत भज, केते अच वच हो सब पच उड़ जाएंगे, केते नव बीज अच पच को करेंगे भज, केते करुत अच हो।

तेज में अतेज जैसे तेज लीन ताही ते उपज सब ताही मैं समाहेंगे। कुकत फिरत के ते रोवत मरत के ते जल में डुबत के ते आग में जरत है के ते गंग वासी के ते मदीना मक्का निवासी के तक उदासी के ब्रह्माई फिरत है। करवत सहत के ते भूम में गड़त के ते सुआ पे चढ़त के ते दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त के ते जल में रहत के ते ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दानो बड्डे बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी घस हारे चंदन लगाए हारे चुआ चार पूज हारे वाहन चढ़ाए हारे लापसी गा हारे गोरन मनाए हारे मड़ी मटली पहारे भीतन लगाए हारे झापसी गाए हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर सब

रेखं न मोहं न क्रोहं न द्रोहं न द्वेखं न कर्मं न भर्मं न जन्मं न जातं न मित्रं न शत्रुं न पितरं न मातं न नेहं न गेहं न कामं न धामं न पुत्रं न मित्रं न शत्रुं न भामं लेखं अभेखं जूनि स्वरूपं सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्धरूपं

मातंग न कर्मंग न भर्मंग न जन्मंग न जातंग द्वैखंग फेखंग जूनी स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परेयं परापरं प्रज्ञा प्रकाशी है छेदंग छयाद अद्वय अविनाशी न जातंग न पातंग न रूपंग न रंगे नमो वाद भंगे नमो वाद भंगे किते कृष्ण से कीट कोटे उपाय सारे गड़े फेर मेटे बनाए अगाधे अभयाद अद्वय अविनाशी परेयं परापरं पूरण प्रकाशी न आदंग न व्याधंग कादंग स्वरूपे अखंड प्रतापाद अच्छा विभूते न जन्मंग न मरणंग न बरनंग न व्याधे अखंडे प्रचंडे अदंडे असाधे न नेहंग न गेहंग सनेहंग सनाथे उदंडे अमंडे प्रचंडे प्रमाथे न जाते न पाते न सत्र न मित्र जबूते भविखे भवाने अचित्रे नरायंग नरंगंग न रूपंग न रेखंग न लोभंग न चोभंग भूतंग अभेखंग न सत्रंग न मित्रंग न नेहंग न गेहंग सदेवंग सदा सर्प सर्वत्र सनेहंग न कामंग न क्रोधंग न लोभंग न मोहंग जो नी अचयाद अद्वय जोहंग न जन्मंग न मरणंग न बरनंग न व्याधंग न रोगंग न सोगंग अभय नृपिखादंग अछेदंग अभेदंग कर्मंग कालंग खंडंग भंडंग प्रचंडंग पालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न गेहंग न भर्मंग न भायंग न रूपंग न भूपंग न कायंग न कर्मंग न त्रासंग न प्रासंग न भेदंग न भर्मंग सदेवंग सदा सिद्ध बिरदंग स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे नृयुक्तंग प्रभाद नुक्तंग प्रतापे अयुक्तंग अक्षयाद अविक्त यथा विभुक्तंग अक्षयाद अक्षय स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे न नेहंग न गेहंग न सोकंग न साकंग परेयंग पवित्रंग पुनीतंग ताकंग न जातंग न पातंग न मित्रंग न मंत्रे नमो एक तंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मंग न भर्मंग न सर्मंग न साके न वर्मंग न चर्मंग न कर्मंग न वाके न सत्रंग न मित्रंग न

विद्याधरे मानवी हो कहूँ राजसी हो कहूँ राज कन्या कहूँ श्रेष्ठ की पृष्ट की रिष्ट पन्या कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम बानी कहूँ गोक की काव कथा कहानी कहूँ मद्र सारंग कहूँ भद्र रूपं कहूँ मद्र बानी कहूँ क्षुद्र स्वरूपं कहूँ वेद विद्या कहूँ काव रूपं कहूँ चेष्टा चार चित्रं स्वरूपं कहूँ।

कर्ता सदीव हरता सनात आसन अडोल अनभूत करम दाता दयाल अनभूत धर्म। जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम बरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं ब्योत।

कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूँ वेद रीत जगे आदि क्रम कहूँ अग्न होत्र कहूँ तीर्थ धर्म कई देश देश भाखर टंत कई देश देश विद्या बढ़ंत कई गर्त भांत भांतन विचार नहीं नैकतास पायतन पार कई तीरथ तीरथ भरम सो भरम गई अग्न होत्र कई देव करम गई गर्त वीर विद्या विचार नहीं तदपतास पायतन पार कहूँ राज रीत कहूँ जोग धर्म कई सिमृत शास्त्र उजरत सुक्रम न्यौली याद करम कहूँ हस्त दान कहूँ अश्वमेध मुख को बखान कहूँ करत ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ बिरद चार कहूँ करत जाच गंधर्व गान कहूँ धूप दीप कहूँ अर्घ दान कहूँ पितृ करम कहूँ वेद रीत कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत कहूँ करत शास्त्र सिमृत उचार कई भजत एक पग निराधार कई नेह देह कई गेह वास कई ब्रह्मत देश देशन उदास कई जल निवास कई अगन ताप कई जपत उर्द लटकंत जाप कई जपत जो कल्पं प्रजंत नहीं तदपदास पायतन अंत कई करत कोट विद्या विचार नहीं तदप दृष्ट देखे मुरार बिन भगत सकत नहीं भरत पान बहु करत हो मर जग दान बिन एक नाम एक चित्त लीन फोकटो सर्व धर्म।

जमीन जमाजे रचें सर्व मकीन मका जय राग न रूप न रेख रुखं जे ताप न साप न सोख सुखं जे रोग न सोग न भोग भुयं जे खेद न भेद न छेद छयं जय जात न पात न मात पितंग जे रचयं क्षत्रि छत्र छितं जय राग न रेख न रोग भणं जे द्वैख न दाक न दोख गणं जय अंडह ते ब्रह्मंड रचयो दस चार करी नवखंड सचयो रज तामस तेज अतेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्रेय सिंधुरो बिंदन केन्दन गंग श्रेय जज गंधर्व फणिंद भुजंग रज देव देव भेव नरंग नरपाल नृपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंडज सेत

भूत छूत मतंगन गाद प्याद अनाद कतंगन खेद भेद छेदन रंगजे चार चतुर्दिश चक्र फिरंग जय राग न रंग न रेख रुकंग जे शोक न भोग न जोग जुगंग भो भंजन गंजन आदि सिरंग जे बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जाछ भुजंग।

वेद पुराण कतेव जपै सुत सिंध अदो मुख ताप तपै कई कल्पन लो तप ताप करे नहीं नैक कृपा निध पान परै जे फोकट धर्म सफै तज है एक चित्त कृपा निध को जप है ते या भवसा कर को तर है भूल न देह पुनर्धर है एक नाम बिना नहीं कोट वृत्ति इम वेद उचारत सार सुती जो वारस के जस

अगंज आदि देव है अभंज भंज जानिया भूत भूत है सदा गंज गंज मानिया अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है समस्त सिद्ध वृद्ध दास देव सर्वसात है अनाथ नाथ नाथ है अभंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्धता अनूप रूप स्वरूप है अछिज तेज मानिय सदीव सिद्ध शुद्धता प्रताप पत्र जानिय न राग रंग रूप है न रोग राग रेक है अदोगतागतज्ञ है अभूत ब्रह्म भेक है न दात मात जात है न पाद चिहन वरण है अदेक शेख भेक है सदीव विश्वभरण है विश्वंबर विश्वनाथ है विशेख विश्वभरण है जिमी जमान के बिके सदीव करम भरम है अद्वेक है अभेक है अलेख नाथ जानिए सदीव सर्वठोर मैं विशेख अन्न मानिय न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई पुराण यो कुरान नेत नेत कह बतावई न करम में न धर्म में न भरम में बताइए अगंज आदि देव है कहो सो कैसे पाइये जिमी जमान के बिके समस्त एक ज्योत है न घाट है न बाढ़ है न घाट बाढ़ होत है न हान है न बान है समान रूप जानिए मकीन यो मकान अप्रम

न जच है न गंधर्व है न नर है न नार है न चोर है न साहु है न साह को कुमार है न ने है न गे है न दे को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छल को मिलाओ है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है न राग है न रंग है न रेख है न रूप है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छाया को मिलाओ है न राग है न रंग है न रूप है न रेख है न कर्म है न धर्म है अजन्म है अभेक है न तात है न मात है अख्याल खंड रूप है अछेद है अभेद है न रंग है न भूप है परे है पवित्र है पुरीन है पुरीत है पुराण है अगंज है।

न सीत है, न सोच है, न ग्राम है, न घाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नर को स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र के विभूत है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न द्वैख है, न भेख है, न दुई है, न द्रोह है, न काल है, न बाल है, सदीव दयाल रूप है, अगंज है, अभंज है, अभरम है, अभूत है, अछेद छेद है, सदा गंज गंज गंज है, अभूत अभेक है, बलिया रूप राग रंग है, न द्वैख है, न भेख, न काम क्रोध कर्म है, न जात है, न पात।

गजाधपि नराधपि करंत सेव है सदा सिदस्पति तपस्पति वनस्पति जप सदा अगस्त आद जे बड़े तपस्तपि विषे किए बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ पे किए अगाध आद देव किए नाद बात मानिए न जात पात मंत्र मित्र शत्रु स्नेह जानिए सदीव सर्वलोक के कृपाल ख्याल में रह।

जाच के नर मच मास मुर्ग उर्ग पार नेत नेत पुकार हे शिव सकर ओम मुख चार सर्व सपद पतार के तर जाप ही जय जाप आद देव गाद तेज नाद मूर्त अताप जंत्र मंत्र न आवे कर तंत्र मंत्र न कीन सर्व ठोर रहे ओ विराज धीराज राज प्रवीण जाच गंधर्व देव दानो न ब्रह्म क्षत्रिय माहे वैसनंगे विखे विराजे शूद्र भी वह नाहे गुड़ गौड़ न भील भी कर ब्रह्म शेख स्वरूप राध दिवस न मध उर्द न भूमा का सनूप जात जन्म न काल करम न धर्म करम विहीन तीर्थ जातरण देव पूजा घोर के न अधीन सर्व सपद पतार के तर जानिए जय ज्योत शेष नाम सहंस फन नहनेत पूर्ण होत सोध सोध हटे सब सुर विरोध दानव सरब गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर गरब पढ़त पढ़त सके महागव गढ़त गाड़ अनंत हार हार कहो सुबु मिल नाम नाम दुरंत भेद भेद न पायो लखियो न सेवक देव देव दानो मूड मानो जच न जान जेब भूत भव भव

सर्व करता सर्व हरता सर्व दयाल देख, चक्र चैन न वर्ण जा को जात पात न भेख, रूप रेख न रंग जा को राग रूप न रंग, सर्व लायक सर्व गाय

दुष्ट गंजन शत्रु भंजन परम पुरक प्रमाथ दुष्ट हर्ता सृष्ट कर्ता जगत में जय गाथ भूत भव भवेख भवान प्रमाण देव गंज आदंत नाद श्रीपद परम पुरक अभंज धर्म के अन करम जेत की नौन पसार देव देव कंद्रव किन्नर मछ कछ अपार भूम का जले थले मेहमानिये जय नाम दुष्ट हर्ता पुष्ट करता श्रेष्ठ हर्ता काम दुष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल लाल गोबिंद मित्र पालक शत्रु हालक दीन दयाल मुकंद अघाओ दंडन दुष्ट खंडन काल हुंके काल दुष्ट हरनं पुष्ट करनं सर्व के प्रतपाल सर्व कर्ता सर्व हर्ता सर्व के यन काम सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज भाम सर्व भुगता सर्व जुगता सर्व करम प्रभीन सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व करम अधीन सर्व स्मृतन सर्व शास्त्र सर्व वेद विचार दुष्ट हर्ता बेसुभर्ता आद रूप अपार दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आद देव खंड भूम का जले थले महे जपत जाप अमंड श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिए सब चार आद देव पार श्रीपद दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता सर्व मान महेंद्र वेद व्यास करे कई दिन कोटेन्द्र उपेन्द्र जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार वेद भेव न पावे शिव रुद्र मुख चार कोटिंद्र उपिंद्र व्यास नक सनत कुमार गाय गाय धके सब गुण चक्रत भे मुख चार आद अंत न मध्य जा को भूत भव भवान सत दुआ पर तृतीय कल युग चत्र काल प्रधान ध्याय ध्याय धके महामृ गाय गंधर्व पार हार हार थके सब नहीं पाइये तह पार नारद आदक वेद व्यासक मुन महान अनंत ध्याय ध्याय धके सब कर कोट कष्ट तुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाच बछर पार सोध सोध थके महासुर

कहाँ रंक राजा कवन हरक सोग है कवन को रुकी रागी कवन कहो तत्मोह तवन दोहरा कवन सृष्ट को पुष्ट है कहाँ सृष्ट को विचार कवन सृष्ट को भ्रष्ट है कहो।

दुर्जन दल दंडन असुर विहंडन दोष निकंदन आदि प्रत्ये चरासुर मारण पति दोधारण नरक निवारण गूढ़ गते अच्छे अखंडे तेज प्रचंडे खंडे उदंड अलख मते जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन रम्भ कपर्दन छत्र छिते आसुरी विहंडन दुष्ट निकंदन पुष्ट उदंडन रूप ते चंडा सुर चंडन मुंड विहंडन धूम्र विदुंसन महक मथे दान प्रहारण नरक निवारण नदम उदारण उर्धे जय जय उसी मह खासुर मर्दन रंभ कबर्दन आदि वृते डावरूड वंगे बबर बवंगे भुजा फरंगे तेज बरंग लंगुड़िया बांधे आयुध बांधे सैन विमर्दन काल सुरंग अष्टायुध जमके भूखंड दमके असिर जमके भूंक फनंग जय जय उसी मह खासुर मर्दन रंभ कबर्दन दैत जिनंग चंडा सुर चंडन मुंड में मुंडन खंड अखंडन खून किते दामनी दमंकण धुजा फरंकण फणी फुंकारण जोत जिते सरधार विवर खण दुष्ट प्रकर खण पुष्ट प्रहर खण दुष्ट मथे जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन भूमा कासल उर्दाधे दामनी प्रहासन सुछभ निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गूढ़ गते रक्तासुर आचन जोत ब्रह्माचन हृदय राजचंद्र अमृते श्रोणंत अचिंती नल विवंती जोग जयंती खड़क धरे जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन पाप मिना संधरम करे अघ ओघ निवारण दुष्ट प्रजारण श्रेष्ठ उबारण शुद्ध मते फणी अर्भुंकारण बाग बकारण सस प्रहारण साध मते सहति सन्नाहन अष्ट प्रवाहन बोल निवाहन तेज तुलंग जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन भूम आकाश पताल जलंग चाचर चमकारण चुरहारण धूम धुंकारण द्रप मथे दाढ़वी प्रदंते जोग जयंते मनुज मथंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूर्य प्रतेजन अष्टभुजे जय जय हो सी मह खासुर मर्दन भरम विनाशन धरम धुजे घुंगुरु गमंकण ससुर झमंकण फणियर भुंकारण धरम धुजे अष्टाट प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दुष प्रणासन चक्र कथे केसरी प्रवाहे सुत सन्ना हे अगमथा हे एक वृते जय जय हो सी मह खासुर मर्दन आदि कुमार अगाध वृते सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन मृत मथे कावरु कुमारे अधम उधारे नरक निवारे आदि कथे किंकणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंहारोहण वितल तले जय जय हो सी सब ठार निवासन बाय पताल आकाशन ले संकटे निवारण नधम उदारण तेज प्रकार खण दुंद तपे दुख दोख दहंती ज्वाल जयंती आद नाथ अगाध अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापन जपत जिवे जय जय उसी सहस्र प्रकार खण आद अनिल अगाध अभे चंचला चखंगी अलग भुजंगी दुंद तुरंगण तिच सरे कर कसा कुटारे नरक निवारे अधम उधारे तूर भुजे दामनी दमंके के हरलंके याद अतंके क्रूर कथे जय जय होसी रक्ता सुरखंडन सुंभ चक्रतन सुंभ मथे बारज बिलोचन वृतन विमोचन सोज बिसोचन गौज कसे दामनी प्रहासे सुख सरणासे शुभ्र सुभा से दुष्ट क्रसे चंचला प्रांगी भेद प्रसंगी तेज तुनंगी खंड सुरंग जय जय होसी मैं खासुर मर्दन आद अनाद अगाधूर्धंग घंट का विराजे ऋण सुन बाजे भ्रम भाजे सुनत सुरंगो किल सुन लाजे किल बिक बाजे सुगोप राजे मध उरंग दुर्जन दल दजे मंथन रिझे सब न भजे रोहरणंग जय जय हो सी मह खासुर मर्दन चंड चक्रदन आद गुरंग चाचरी प्रजोधन दुष्ट विरोधन रोज रोधन क्रूर प्रते धूमराज विदुंसन प्रलय प्रजुंसन जग विदुंसन शुद्ध मते जाल पा जयंती शत्रु मथंते दुष्ट प्रदाहन गाढ़ मते जय जय हो सी मह खासुर मर्दन आदि जुगाद अगाध गते खत्रियाण खतंगी अभय भंगी आद अनंगी अगाध गते बृढ़लाज बिहंडन चक्षुर दंडन तेज प्रचंडन आदि वृते सुर नर प्रतिपारण पति दोधारण दोष निवारण दुख हरे जय जय हो सी मह खासुर मर्दन विश्व विदुंसन श्रेष्ठ करे दामने प्रकाशे उन्दर नासे जोत प्रकाशे अतल बले दानवी प्रकर खण सर्वर वर खण दुष्ट प्रदर खण वितल तले अष्टायद बाहन बोल निवाहन संत पनाहन गूढ़ गते जय जय हो सी मह खासुर मर्दन आद अनाद अगाध वृते दुख दुख प्रपक्षण सेवक रक्षण संत प्रतक्षण शुद्ध सरे सारंग सन्ना हे दुष्ट प्रदा हे अर्दल गा हे दुख हरे गंजन गुमाने अतुल प्रवाने संत जमाने आद अंते जय जय हो सी मह खासुर मर्दन साधु प्रतक्षण दुष्ट हंते कारण करी ली गर्भ कही।

चछरासुर मारन नरक निवारण पति दो धारण एक भटे पापान बिहंडन दुच प्रचंडन खंड अखंडन काल कटे चंद्रानन चारे नरक निवारे पति दो धारे मुंड मते जय जय ओसी मैं का सुर मर्दन धूम्र विध्वंसन आद कथे। रक्तासुर मर्दन चंड चक्र दन दान वर्दन बिडाल पधे सरधार विवर्कण दुर्जन धरकण अतुल अमरकण धरम धुजे धूमराज विदुंसन।

धान कामल कृपाल दुख दुख हरद दाता दयाल अंजन विहीन अनभंजनाथ जलधर प्रभाव सर्वत्र साथ। जय जात पात नहीं भेद भरम जय रंग रूप नहीं एक धर्म जय शत्रु मित्र दो एक सार अच्छा स्वरूप जल पार। जानी न जाय जय रूप रेख कहे बास तास कहे कौन भेग कहे नाम तास है कवन जात जय शत्रु मित्र नहीं पुत्र भ्रात। करुणा निदान कारण स्वरूप जय चक्र चिन्ह नहीं रंग रूप जय खेत भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत की कर्तपाल। उर्धंग बिरह सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग पाल जुद्धंग अनूप जय रूप रेग नहीं रंग राग अंशिज तेज अन भिजदाग। जल धन महीब बंतन दुरंत जय नेत नेत निस दिन उचरंत पायो न जाय जय पैर पार दीनान दुख तहता उतार। कई कोट इंद्र जय पानहार।

है, दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्रीपद मापतल है। काम न क्रोध न रूप न वो न रोग न शोक न भोग न भय है। देह विहीन स्नेह सबोतन नेह विरक्त के है अच्छा है। जान को देते अजान को देते जमीन को देते जमान को दे है। काहे को डूलत है तुमरी सुध सुंदर श्री पद मापतल है। रोगंते अरसोगंते जल जोगंते वो भात बचावे शत्रु अनेक जलाव दखाव तऊ तन एक न लागन पावे। राखत है अपनो कर दे कर बाप संभू न भेट न पावे। और की बात कहा कह दो सौ सौ पेट ही के पट बीच बचावे। जाछ भुजंग सो दानव देव भेव तुम सब ही कर द्यावे। भूमा का सब ताल रसातल जाछ भुजंग सब सिर न्यावे। पाए सके नहीं पार प्रभा हमको नेत ही नेत भेद बतावे। खोज थके सब ही खुजिया सुरहार परे हर हाथ न आवे। नारद से चतुरानंद से रुमनारिक से सब हु मिल गायो। वेद गते व न वेद लखे सब हार परे हर हाथ न आयो। पाए सके नहीं पार उमावत से दसनाथ सनंदन ध्यायो। ध्यान धरो तह को मन मै जय को अमितोज सब जग छायो। वेद पुराण कतेव कुरान अवेद निर्वाण सब बचहारे। भेद न पाए सके उन भेद को खेदत है अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साग न सोग न संग तिहारे। आद अनाद अगाध अपेगाद वैग जप्योत नहीं कुल तारे। तीर्थ कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे। देश फिर अगर भेस्त बोधन के धरे न मिले हर प्यारे। आसन कोट करे अष्टांग धरे बहुन्यास करे।

अत्र के चलैया छित छत्र के धरैया छत्र धार्यो के चलैया महा सतरन के साल है दान के देवैया महा मान के बढ़ैया अवसान के देवैया है कटैया जम जाल है जुद के जतैया।

फरा के फिरंगी माने कंधारी गुरे से जाने पश्चिम के पश्चिमी पछाने निज काम है। मर टांगेल तेरी मन सो तपस्या करे देड़ वह तिलंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलत है। रोह के रोहल मांग देश के मंगेले वीर बंग सी बुंदेले बाप पुंज को मलत है। गोखा गुन गावे जिन मचीन के शीस न्याव ते बते थे आए दुख देह के दलत है। जिन्हें तोहे धयो तिन्हें पूर्ण प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल स्यों फलत है। देव देवतान को सुरेश दानवान को महेश कंग दान को अभेश कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पे नदी।

अद्वया पे नासी परम पूर्ण प्रकाशी महारूप हूँ के राशि है अनासी क्या के मानी है जंत्र हूँ न जात जय की बाप हूँ न मायता की पूर्ण प्रभा की सोचा के अनुमानी है तेज हूँ को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र कह के जानी है तेज हूँ को तार है के राजसी को सार है के शुद्धता को घर है के सिद्धता की सार है कामना की खान है के साधना किसान है विरक्तता की बान है के बुद्ध को उदार है सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप हूँ को रूप है कुमत को प्रहार है दीनन को दाता है गनीमन को गारक है साधन को रक्षक है गुणन को पहार है सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रुद्ध को अभूत है के अच्छे अविनाशी है काम को गुनिंदा है के खूब को देहंदा है गनीमन करिंदा है के तेज को प्रकाशी है काल हूँ के काल है के शत्रुन के साल है के मित्रन को पोगत है के वृद्धता की बासी है जोग हूँ को जंत्र है के तेज हूँ को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को वास है के बुद्ध हूँ को घर है देवन को देव है निरंजन।

देवन को देव है, के शुद्धता को सर है, जान को बचैया है, मान को देवैया है, जमजाल को कटैया है, के कामना को कर है, तेज को प्रचंड है, अखंडन को खंड है, महीपन को मंड है, के स्त्री है न नर है, विश्व को भरण है, के आपदा को हरण है, के सुख को करण है, के तेज को प्रकाश है, पाई है न पार पर अवार हूं को पार, जग की जत विचार सो विचार को निवास है, हिंगुला हिमालय गावे हाँ बसी हलब भी त्यावे बूर भी न पार पावे या सत्य अनाश है, देवन को देव महादेव हूं के देव है, निरंजन अभेव नाथ अद्वै अविनाशी है, अंजन विहीन है, निरंजन प्रवीण है, के सेवक अधीन है, कटैया जम जाल के, देवन के देव महादेव हूं के देव नाथ, भूम के भुजैया है मोहैया महाबाल के, राजन के राजा महासाज हूं के साजा महाजोग हूं को जोग है, धरैया द्रुम छाल के, कामना के कर है, के बुद्धता को हर है, के सिद्धता के साथी है, के काल है कुचाल के, छीर कैसी छीरावत छाछ कैसी छतरा नेर, छपाकर कैसी छब कालिंद्र के कूल के, हंसनी से सिहारू मही रसी हो सना बाद, गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के, पारसी पलाऊ गढ़ रूपा कैसी रामपुर, सूरासी सुरंगाबाद निके रही झूर के, चंपासी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदागढ़, कीरत तिहारे रही मालती सी फूल के, फटक सी कैलाश कमाऊ गढ़ कांसीपुर, सी शशि सुरंगाबाद निके सोहियत है, हिमा सी हिमालय हर हार सी हलब्बा नेर, हंस कैसे हाजीपुर देखे मोहियत है, चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रगिर, चांदनी सी चांदागढ़ जोर जोहियत है, गंगा सम गंगधार पक्कान सी बिलंदाबाद, कीरत तिहार की उजियारी सोहियत है, फरासी फिरंगी फरासी सके तुरंगी, मकरान के प्रतंगी तेरे गीत गायत है, फकरी कंधारी गोर कखरी कर दी जचारी, पौन के आहारी तेरो नाम ध्यायत है, पूरब पलाऊ काम रूप कमाऊ सर्वठौर, मैं बिराज जहां जहां।

जी गुरु गरीब निवास यंत्र जामे सच्चे पातशाह जी महाराज आप जी के पावन स्थान दी हाजरियां पर देव गुरु की संगत वालों गुरबाणी के शब्द कीर्तन सत्कार करते हुए बेअंत मैं अरदास कराई पातशाह सतगुरु आप नाम जाने जन सतगुरु जी कृपा करनी रहमत बख्शिश करनी दे अरुपता दे नाम निदात कर यात्रा

रहाओ। सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई, कहण न जाई तेरी तिल वडियाई। सब सत सब तप सब चंगियाइयां, सिद्धां पुरखां कियां वडियाइयां। तुद विण सिद्धि कनै न पाइया, करम मलै नाही ठाक रहाइया। आखण वाला क्या वेचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा।

राव सुराव हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर सरदा हर प्यास हर हर नाम मलै तृपता सह मिल संगत गुण प्रगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए दृग जीव दृग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन धुर मस्तक लखया लखास धन धन सत संगत जित हर रस पाया।

वंचित वह उदम जा आहर हर जियो परया सैल पथर मह जंत उपाय ताका रजक आगे कर धरिया मेरे माधव जी सत्संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूखे काष्ट हरिया रहाव जन पिता लोक सुत बंता कोय न किसकी धरिया सिर सिर रजक संबाहे ठाकुर काहे मन भाव करिया ऊडे ऊढ़ आवे सैको सातिस पाछ बछरे छरिया तिन

तेरे क्या गुण आख बखाना, जो सेवह जो सेवह तुद जी, जन नानक तिन कुरबाना। हर ध्यावे हर ध्यावे तुद जी, से जिन जुग मह सुख वासी, से मुकत भये जिन हर ध्याया जी, तिन तूटी जम की फासी। जिन निर्भव जिन हर निर्भव ध्याया जी, तिन का भव सब गवासी। जिन सेविया जिन सेविया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर ध्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनक अनेक अनंता। तेरी अनक करे हर पूजा जी, तब तापह जपह बेअंता। तेरे अनेक पड़े बहु सिमृत शास्त जी, कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो भावे मेरे हर भगवंता। तू आदि पुरख अपरंपर करता जी, तुद जे वडियावर ना कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू नह चल करता सोई। तुद आपे भावे सोई वरते जी, तू आपे करह सोई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सरज सब गोई। जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब सहका जानोई। आसा महला चौथा, तू करता सचियार मांडा साई। जो तौ भावे सोई थीसी, जो तू दे सोई हाँ पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी ध्याया, जिसनू कृपा करह तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लाधा मनमुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल। जिसनू तू जाना है सोई जिन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने। जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू

शरणा जिन तू नाही विसरिया आसा महला पंजवा भई प्राप्त मानख देहुरिया गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया।

चौपाई सम सत्रह सह सुभणी जय अर्ध सह सुभुन तीन कह जय भादव सुदी अष्टमी रवारा तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा इत

राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भक्त नेत स्वर्ग बास रग बर करा सगरी पुरी समेत चौपई जो एह कथा सुने अर गावे दुख पाप तह निकट न आवे बिशन भगत किए फल होई आद ब्याज छ सकै न कोई सम सत

क्या नहीं घर तेरे, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर शान सुख मन आय वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुरबान किता गुरु बेटो, जिस दियां एह वडियाइया, कह नानक सुनो संतो, शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तत घर, सभागै घर सभागै, शब्द वाजे कला जित कर धारिया, पंच दूत दवस कीते काल, कंटक मारिया, धुर करम पाया, तुद जिन कौ से नाम हर कह लागे, कह नानक तह सुख हुआ, तित घर अनहद वाजे, आनंद सुनो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल विसूरे।

चरण लागे वाजे अनहद तूरे। ओ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मंदावणी महला पंजवा, थाल विच तिन वस्तु पईओ, सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सब सु अधारो। जे को खावे जे को भुंचै, तिसका होए उधारो। एह वस्त तजी नह जाई, नित नित रख उर धारो। तम संसार चरण लग तरिय, सब नानक ब्रह्म पसारो।

मत ऊची मत पत का राखा आप वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चितावे चितावन का सदका सर्व सुख होवे। खालसे जी की देख तेग फते चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल रहे धर्म का जयकार खालसा जी साहेब बोलो जी। खालसे जी को नाम दान सिखी दान गुरमत दान बुद्ध बबेक रहत रिच्छा दान। खालसे जी को श्री हरमंदर साहिब अमृतसर सरोवर जी के स्नान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन ददार मेले बोलो जी। श्री अकाल तख्त साहिब जी संतोख सर जी बबेक सर जी राम सर जी कौल सर जी तरन तारन जी तपियाने जी खडूर जी गुरु की बौली श्री गोविंदवाल साहिब जी के स्नान दर्शन ददार मेले बोलो जी। थम जी ननकाने जी करतारपुर जी बाबे नानक देहरे जी तख्त केसगढ़ साहिब आनंदपुर जी कीरतपुर जी पातालपुर जी लखनौर जी चमकौर जी फतेहगढ़ साहिब जी दमदमा साहिब जी धमतान जी मुकतसर जी पौंटे जी तख्त पटना साहिब हरमंदर दिल्ली मैं शीशगंज रकाबगंज बाला साहिब बंगला साहिब सत्तो।

फतेह। खुशियां दे जकारे गजावे, सोनी हाल हो जावे। सत श्री अकाल, गुर बरकाल, देग तेग फतेह। गुरपंथ काल से दी दिनों दिन चढ़दी कला रखनी सचे।

सब कोए नच नच हजर दल से रोए न जाए सदना होए नचन कुदन मन का जाओ नानक जन मन पौते।

मुसलमाना सिफत सिरत पड़ पड़ करे विचार बंदे से जे पवे विच बंदी वेकण गुजार हिंदू साला ही साला अन दसन रूपा पार तीर्थ नावे अर्चा पूजा गरबाज बकार जो कि सुनते हम जिते लग नाम करतार सुख मूर्त नाम जन काया काकार सत्या मन संतूप जे देने के विचार दे मंगे ससा गुणा सोप करे संसार चोरा

मूर्ख अंधे पुत गवाई मिन ना बैकत था न पाई रह पे पानी मिन मसानी अंधना जाने फिर पुत दाने सतगुर बैठे।

बलहारि कुद्रुम स्यात्रांत्रा जन करहाओ। जात में जो जुत में जाता अकल कला पर पुरया, तू सच्चा साहिब सिद्ध सवाले जिन कितने

नानक मैं सिरकाए कृति कृतवाओ जुग जुग पे उठाए ज्ञान पूजताए सात जुग रसंतो कात्रम कृतवाओ त्रे तेरे जते का जोर कृतवाओ द्वापर तपे का सिद्ध कृतवाओ।